हमें दादो से मंदिर का किसी अकल से इसमें का शक से या आज नगंगार बचा रहे हैं।